आयोजक दिदी बहनी मीडिया हाउस स्टार यति इभेन्ट तथा पार्टी प्यालेस वसुन्धरा काठमाडौँ समय 2084 भदौ 20 गते शनिबार बिहान 11 बजेदेखि अपरान्ह 4 बजेसम्म सम्पर्क नम्बर 9856301।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों
1: रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ट्ज़।

0: आयो चौक दीदी बहनी मीडिया हाउस स्टार एटी इवेंट तथा पार्टी पैलेस वसुंधरा काठमांडू समय 2084 भदौ 20 गते शनिवार बिहान 11 बजे देखि अपराह्न 4 बजे सम्म संपर्क नंबर 9875 3001।
1: सामाजिक सञ्जाल जी छानले जाजी मरी बुझी मरी ब्याङ्गैन आधिकारिक प्रोफाइल मात्र फलोलना खैबै बिनी लिंक खुल्दिउ भन्दा उइसु सु खन क्या खलो सुजी बिमिलो खन यामो बिमारी छानले खोना दे खुल्दिग वेबसाइट एना यूआरएल चेक लना आछब घटना तल आपिबै लागि समय समयरी आफैन पासपोर्ट फेरदिल परिमो नुई तोय तारी शंख लैदी भिसा बैंगरी यही मरी तुरन्त खबर लना
2: सतर्कता न ठगे तब त क्या जोगिना
3: सिद्धार्थ बैंगर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई
5: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज।

आयोजक दीदी बहनी मीडिया हाउस स्टार एटी इवेंट तथा पार्टी प्यालेस वसुंधरा काठमांडू समय 2084 भदौ 20 गते शनिवार बिहान 11 बजे देखि अपराह 4 बजे सम्म संपर्क नंबर 9875 3001।

0: आयोजक दिदी बहनी मीडिया हाउस स्टार यति इभेन्ट तथा पार्टी प्यालेस वसुन्धरा काठमाडौँ समय 2084 भदौ 20 गते शनिबार बिहान 11 बजेदेखि अपरान्ह 4 बजेसम्म सम्पर्क नम्बर 98576341
1: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज हामी सबैको साझा आवाज।

पानी जीवन को आधार हो, तर स्वच्छ पानी स्वस्थ जीवन को आधार। हिमालयज ऑन टॉप, लांगडांग हिमाल को स्वच्छ प्राकृतिक पानी अब तपाईको हातमा।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 5 बज्यो।